0: to 98.1 FM Radio Eastern every Thursday, 8 to 9 p.m. for Bollywood radio program.
1: Hello, Zindagi.
2: Namaskar, Melbourne. Good evening. Kaise hain aap sab? A very warm welcome to everyone tuning into Radio Eastern 98.1 FM. हर कहानी में एक रोशनी होती है उस रोशनी को साथ लेकर मैं हूं आपकी होस्ट ऐश वेलकमिंग यू टू अ स्पेस ऑफ जीरो जजमेंट एंड इनफाइनाइट होप हेलो जिंदगी हो हा हो ह्यूमन हैप्पीनेस एंड होप दोस्तों जी हां मैं आपसे बात कर रही हूं हमारे लिसनर्स एक छोटा सा सवाल है आप सबसे याद है आपको अपना बचपन वो स्कूल की छुट्टियां वो गलियों में खेलना रेडियो पर गाने सुनना दोस्तों के साथ मस्ती करना और वो दिन जब खुश होने के लिए हमें किसी बड़ी वजह की जरूरत ही नहीं होती थी कभी कोई पुराना गाना सुनते ही आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें आ जाती थी कभी किसी गाने की धुन हमें किसी खास इंसान की याद दिला देती थी और कभी बस एक छोटा सा पल हमें वापस उन दिनों में ले जाता था जब जिंदगी थोड़ी सिंपल थी और खुशियां बहुत बड़ी और इसी खूबसूरत एहसास को फिर से जीने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए एक खास शाम आओ हुजूर तुमको बचपन में ले चलें एक ऐसी शाम जहां म्यूजिक होगा परफॉर्मेंसेस होंगी यादें होंगी और शायद आपके चेहरे पर वो बचपन वाली स्माइल भी लौट आएगी Our upcoming event is on Friday, the 30th of October at Knox Community Arts Centre in Bayswater. Doors open at 6 p.m. and the show starts at 6:30 p.m. ये जो इवेंट है इसके लिए आपको टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी सो अगर आपने अभी तक अपनी टिकट्स बुक नहीं की हैं तो ज़रूर कीजिए यू कैन फाइंड द डिटेल्स ऑन हेलो जिंदगी फेसबुक ग्रुप और सिंपली बाय सर्चिंग इन गूगल सर्च द इवेंट्स नेम द टिकट्स आर अवेलेबल ऑन ह्यूमैनिट्रिक्स Humanitics is tickets for good, not greed. And the best part is 100% of the booking fee profits go to charity. Over 20.7 million has been donated to charity till date by Humanitics. And this event is sponsored by Taxed, Melbourne's trusted business advisors and accounting experts. Now, before I carry on with what surprise I have for you, let's listen to another song.

0: I hope you all enjoyed the song. And yes, I was talking to you about the event. तो आप जब अपने टिकट्स बुक करें तो सिर्फ अकेले मत आइएगा, अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली को साथ लेके आइएगा, बिकॉज सम मेमोरीज आर इवन मोर ब्यूटिफुल व्हेन शेयर्ड. लेकिन आज शाम हम सिर्फ इवेंट की बात नहीं करेंगे, आज हम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो आपकी 30th अक्टूबर की शाम को खास बनाने वाले हैं. आर वंडरफुल आर्टिस्ट, आर वंडरफुल स्टार्स. आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं 5 टैलेंटेड परफॉर्मर्स, कृति कीर्तन शर्मा, लविंगली नोन एज किट्टू, शाम्भवी गुप्ता, वैभव हंशु, प्रिया शुक्ला और हमारे टैलेंटेड तबला प्लेयर मयंक. आज हम इनकी परफॉर्मेंस के पीछे छुपे इंसान को जानेंगे, इनकी कहानियाँ सुनेंगे, इनके बचपन की यादें जानेंगे और ये भी समझने की इनकी ज़िंदगी में म्यूज़िक का क्या रोल है. बिकॉज एट हेलो ज़िंदगी वी बिलीव कि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर कहानी में कुछ ऐसा होता है जो हमें इंस्पायर कर सकता है. तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे एक हमारे स्टूडियो में किट्टू से बात करके. सो किट्टू, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी.
1: जी आश, कहिए.
0: स्टेज से हटकर आप असल जिंदगी में कैसे हैं और आपका म्यूजिक या परफॉर्मिंग का सफर कैसे शुरू हुआ?
1: तो स्टेज से हटकर मेरी जितनी तारीफ़ की जाए ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है. और ये सफ़र, वैसे मैं एक इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ, जो कि आप सभी जानते हैं बहुत एक्साइटिंग जॉब होती है और कुछ अलग नहीं होता है. तो एक अलग ज़िंदगी जीने को मिलती है परफॉर्मेंसेस के ज़रिए. बाकी ये सफ़र जो है ये बड़ी मतलब परस्ती से शुरू हुआ था. अगर हम डांस करते हैं स्कूल में, गाना गाते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो हमें क्लास नहीं जाना पड़ता है. तो लगभग चौथी क्लास में ये बात समझ आ गई थी कि अगर ये किया जाए तो हम मिस कर सकते हैं क्लास में जाना. तो बस वहीं से लिखना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया. सातवीं तक आते आते मैं कथकली कर रहा था. आठवीं में शाइलॉक बन गए थे शेक्सपियर के. और बस फिर वहाँ से कहानी चलती रही, आज आपके सामने बैठे हैं. तो
0: Wow, that is impressive, very impressive actually. Kittu, I did not know that itna sab kuch kiya aapne Kathakali.
1: That is
0: very impressive.
1: Thank you so much.
0: Let's move on to our next guest, and she is Shambhavi Gupta. Shambhavi, ab aap se baat karte hain.
2: Hi.
0: Har artist ka apna ek andaaz hota hai aur apni ek personality hoti hai jo unki performance mein nazar aati hai. आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी कि आपकी जो पर्सनालिटी है जब आप परफॉर्म करती हैं तो उसमें वो कैसे नज़र आती है?
2: मैंने जब से सिंगिंग करना सीखा है, आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड. मैं वैसी वाली स्टूडेंट थी जिसके पेरेंट्स ने उसको हर एक क्लास में डाल रखा था. तो आई यूज़ टू डू सिंगिंग, स्केटिंग, डांसिंग, सब तरह की चीज़ें. बट फॉर बेटर आई थिंक music is something that stuck with me for a very very long time.
0: Yeah.
2: And it became an escape for me.
0: Wow. Okay.
2: There were many instances in my life.
0: Yeah.
2: Where I lost some of my very very close people. Yeah. Like my grandparents, who were like one of the best parts of my life. And even at times such as those, I would reside in singing. So I feel like I'm somebody who feels very deeply.
0: Yeah.
2: And in my music, I think wo hi cheez reflect bhi hoti hai. Main tend karti hoon towards songs and music that are very slow, very grounded in emotions.
0: Yeah.
2: And that is also something that I like to portray and make the audience feel as well.
0: Thank you. And that was really, I mean, for you to be vulnerable and share with us in the studios today, it's not easy. And I can see that emotion coming out, you know, right now. It's good to know, as they say, ki music jo hai, wo aapko bahut powerful banata hai in many ways. So aapne jo bola ki, you know, it's your way to escape. That is, I can understand that, you know, it's so close to your heart. So thank you for sharing. So, our beautiful listeners, before we move on to our next guest, how about we listen to something? So, I'm going to play a song for you, which is something you're going to love. Let's hear Parde Mein Rehne Do.

0: मुझे पर सुनाई थी तो वहाँ पे सबने बहुत तारीफ की और जब मैं देख रही थी कि मैंने ये कविता लिखी है एवरीवन वाज गिविंग एन स्टैंडिंग ओवेशन सब लोग खड़े होकर जब तालियां बजा रहे थे तो मुझे लगा दिस इज़ इट दिस इज़ माय मोमेंट वो जो मुझे खुशी मिली कि मैंने शायद कुछ ऐसा लिखा मैं चाहती थी लोग मेरी बात सुने लेकिन मेरी बात सुन के लोग प्रभावित हुए तो शायद ये एक सही टाइम है शायद मुझे वो पकड़ मिल गई है कि मुझे क्या करना है मुझे कैसे आगे बढ़ना है
1: दैट इज़ ग्रेट प्रिया बिकॉज ऐसे मोमेंट सबकी ज़िंदगी में नहीं आते जहाँ पे आप बहुत सारे लोग अपने पैशंस के साथ जीत बस उनके बारे में सोचते सोचते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो दैट्स वेरी गुड thank you for that and thank you for sharing. Let's move to our fifth guest and he is Mayank Shaladia. Mayank is our tabla player and I think even he knows a lot of instruments. So ab hum baat karte hain hamare tabla player Mayank se. Mayank, aapka tabla ke saath safar kaise shuru hua aur kaun si cheez aapko hamesha isse jode rakhti hai? एक तबला प्लेयर के लिए रिदम और सुर के साथ साथ दूसरे म्यूजिशियंस को सुनना और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो प्लीज़ हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें मयंक ओवर टू यू
2: हाय एवरीवन दिस इज़ मयंक सो तबले के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज इन सेवन स्टैंडर्ड तो लाइक मैं बोल सकता हूँ कि आई एम born and brought up with the Gurukul system. Do you know the traditional yes. Gurukul system?
1: Wow.
2: So वहाँ पे मैं study किया मैंने और वहाँ से ही जो हमारे संत लोग इंडिया में सो वहाँ से ही मैंने म्यूजिक का स्टार्ट किया था लाइक वेन आई वॉज स्टार्ट तो मुझे इतना पता नहीं था कि इसको भी हम एज अ पैशन बना सकते हैं राइट सो मैंने जब स्टार्ट किया तो ऐसे ही मतलब ओके कोई नहीं करते धीरे धीरे धीरे धीरे तो मतलब धीरे धीरे पता नहीं कुछ लाइफ में जो भी चेंजेस हुए और लाइक मैं बोल सकता हूँ कि म्यूजिक तबले की वजह से हुए राइट सो धीरे धीरे वो स्टार्ट किया मैंने और लाइक मेरा ऐसा है मुझे कहीं पे रिदम कुछ म्यूजिक का कुछ भी मुझे बीट्स वगैरह मिले तो ऐसे ही मेरा बोलते हैं ना कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उसी लाइक मैं कुछ सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है आई एम मेकिंग माई ओन बीट्स ऑन दैट पर्टिकुलर रिदम सो वैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया और वैसे देखा जाए तो आई एम ए गुजू लाइक मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से लाइक म्यूजिशंस कोई नहीं है सुनने वाला ज़्यादा है सो जो भी हुआ है सो लाइक आल ब्लेसिंग टू माई मैं बोल सकता हूँ ब्लेसिंग की वजह से हुआ है अदरवाइज म्यूजिक लाइक मेरे में था ही नहीं सो वही कनेक्शंस है और जब भी मैं लाइक स्टेज पर होता हूँ और अच्छे आर्टिस्ट को साथ में होता हूँ तो मतलब कई बार क्या होता है कि शोज़ के टाइम लाइक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वगैरह कुछ करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है और डायरेक्टली हम शो में परफॉर्मेंस करते हैं वो अलग चीज़ है सो व्हेन वी गेट द लाइक गुड आर्टिस्ट सो ऐसे ही कनेक्टिविटी हो जाती है वी यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स जस्ट डू योर वर्क लाइक ऑटोमेटिकली जब सोल कनेक्ट हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली सारे काम इजी हो जाता है तो मतलब ऐसा है मेरा कनेक्शन
1: थैंक यू सो मच थैंक यू मयंक आपने जो कनेक्शन की बात की कि कैसे सोल कनेक्ट हो जाती है और आपने शेयर किया कि आप गुरुकुल सिस्टम से हैं जो कि आजकल इतना कॉमन नहीं है तो थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड अब टू आवर लिसनर्स बहुत सारी बातें हो चुकी हैं एंड आई एम श्योर कि आप कोई ना कोई सॉन्ग का इंतजार कर रहे होंगे तो अभी हम आपको गानों की ओर ले जाते हैं एंड आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू
3: क्या
4: कुछ नहीं ये तस्वीर किसकी है
3: एक लड़की जिसे मैं कई बार सपनों में देख चुका हूँ

0: So to our listeners, I'm sure आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा. And अब गाने तो आपने बहुत सुन लिए. अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी बातें करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 आर्टिस्ट हैं and they have travelled from one part of Melbourne to the other. Some of them have come from the west and it has taken them 2 hours to travel to our studios and I want to make the most of their presence here. So let's start talking to them now. And क्योंकि हम हमारे इवेंट की बात कर रहे थे और हम चाइल्डहुड मेमोरीज की बात कर रहे थे तो अब हम सारे सवाल जो पूछने वाले हैं मैं उसी सीक्वेंस में जाऊंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम किट्टू, गोइंग टू शांभवी, वैभव, प्रिया एंड देन हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने वाले होंगे मयंक. तो मैं बचपन के कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी. किट्टू, बचपन की कोई ऐसी याद जो आप भी आप जो अभी भी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है, और बचपन के किट्टू की कौन सी बात है जो आपके अंदर अभी भी बसी हुई है?
1: जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है बचपन का किट्टू यही है जो आपके सामने बैठा है. पर एक याद, मेरी मदर डॉक्टर हैं, फादर भी डॉक्टर हैं, तो वो सातों दिन काम करते थे. तो हमें क्या है, बहुत अच्छे अच्छे खाने जो हैं वो सैटरडे संडे भी, ऐसा कुछ नहीं, दफ्तर की नौकरी नहीं है तो सैटरडे संडे भी कुछ खास नहीं होता था हमारे लिए. अच्छा. लेकिन हम फिर भी बहुत जब जिद करते थे तो हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग में ही छोले पूड़ी और भटूरे जो है वो बहुत जल्दी मिलते थे. तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए 8:30 बजे 5 भटूरे खाना, लेकिन मैं खा लिया करता था छोटी उम्र से.
0: वेरी गुड.
1: और सारी वो पूरे दिन की तैयारी करके जाती थी तो वो आम भी काट जाती थी, मीठा भी रख जाती थी, और आप मानेंगे नहीं 11 बजे तक सारा खाना ख़त्म हो जाता था. ये हर संडे का नियम था, सुबह 9 बजे छोले भटूरे खाए जाएंगे और 11 बजे तक हम ऐसे ढेर होंगे खा खा के कि बस फिर शाम को जब वो वापस आएंगे तो वही उठाती थी फिर कि अच्छा तुम आ गए हो. तो ये नशे तो बाद में आए हैं, हमने तो कब से आम और छोले भटूरे के नशे करे हैं.
0: आम और छोले भटूरे. मुझे बिल्कुल भूख लगने लगी अभी, लेकिन आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप 5 भटूरे और प्रॉबेबली क्या 1 किलो आम.
1: हाँ बिल्कुल, मैं एक्चुअली खुद पर्सनली 21 की उम्र तक एक भटूरा ही हुआ करता था.
0: अच्छा.
1: वो मैंने अब आइडेंटिफाई डिफरेंटली करना शुरू कर दिया है.
0: तो ये भटूरे की हवा किसने निकाली?
1: ये जिंदगी ने कह लीजिए आप.
0: ये तो सीरियस हो गया कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी. But anyways, thank you Kittu, thank you for sharing. Let's talk to Shambhavi. Shambhavi, बचपन की कोई ऐसी याद जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगी?
2: बहुत डिफ़िकल्ट है ये, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी बचपन था.
0: आप तो साल अभी पहले आप तो अभी भी बच्ची ही हैं. एक्चुअली आप तो बच्ची हैं,
2: इसीलिए काफ़ी फ्रेश हैं सारी मेमोरीज. बट अगर मुझे सबसे स्पेशल एक चूज़ करनी है तो दैट वुड बी होली ऑन एवरी लाइक एवरी ईयर. सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट होली वाज कि हम लोग दोस्तों के साथ तो सब खेलते थे बहुत अच्छे से, सब एक दूसरे को मस्त गंदा करते थे. बट टूवर्ड्स द एंड जब सब थकना शुरू होते थे एंड एवरीबडी वुड जस्ट गो बैक टू देयर होम्स, माय मम एंड डैड, वी यूज्ड टू लिव ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. सो माय मम एंड डैड वुड फिल अप अ ह्यूज टब ऑफ वाटर एंड फ्रॉम द बालकनी दे वुड कॉल मी. आई वुड बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, सो दे कॉल मी और दे से कि नीचे आओ, बालकनी के नीचे आओ. और फिर वो उस पानी में रंग भर के मेरे ऊपर डालते थे सिर्फ मेरे लिए, बिकॉज आई यूज़ टू इन्जॉय बारिश, लाइक रेन डांस जिसको कहते थे हम. सो दैट वॉज लाइक अ रिचुअल फॉर मी एवरी ईयर. मैं जब तक मैंने सूरत में होली मनाई है, अनटिल आई मूव्ड कंट्रीज, तब तक ये हर साल हुआ है, नो मैटर माई एज. एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट माई फेवरेट मेमोरी, आई फील लाइक दैट्स ऑल्सो द मोस्ट फेवरेट मेमोरी ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज दैट वॉज दैट मेड देम फील लाइक यू नो दे स्टिल हैड दैट लिटिल चाइल्ड इन मी फॉर एवर.
0: तो अगर आप अभी भी वापस जब जाएं घर पे होली पे तो अभी भी दे डू द सेम थिंग?
2: डेफिनेटली. मैं गई नहीं हूँ कई सालों से, बट अगर मुझे लगता है कि मैं अगर दिसंबर में भी जाऊँ तो वो हम फिर से रिक्रिएट तो कर ही सकते हैं.
0: नहीं, आई थिंक वी शुड, बिकॉज दिस आल्सो सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो आई थिंक हम करेंगे आपके लिए ये रिक्रिएट.
2: डेफिनेटली.
0: ऑलराइट, सो लेट्स, अभी मेरा सवाल है वैभव के लिए. वैभव
3: जी मैम,
0: बचपन की कोई ऐसी याद जो आप आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है?
3: खैर
1: जब तक इंडिया में थे बचपन ही था, ऑस्ट्रेलिया ने छीन लिया थोड़ा सा, मगर मेरे को तो लगता है कि जब पापा के साथ मम्मी के साथ बैठकर मैं सीखता था, उनके साथ बैठ के गाने गाते थे, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बचपन भी तभी रहता ना जब आपका कोई बचपना देखने वाला हो। यहाँ पर तो मैं ही बड़ा हूँ अपने घर में कहने के लिए, तो यहाँ पर तो नहीं वो चीज़ फीलिंग है, बट जब उनके साथ बैठते थे या वक्त बिताते थे, वो बहुत ही कमाल का किस्सा है। किट्टू भाई ने नशे की बात करी है तो मैं भी करूँगा।
0: बिल्कुल।
1: हम छोटा सा हमारा घर था, तो हम लोग सभी एक कमरे में सोते थे सारे। तो रात को रोज सोने से पहले ना गर्मियों के मौसम में तरबूज आता था। अब तरबूज कभी मीठा आ गया, कभी फीका आ गया। अब तरबूज मीठा नहीं आया तो फिर क्या करें। तो मेरी मम्मी लेती थी, क्या बोलते हैं, फाक काटी और उस पर चीनी डाल देती थी।
0: Okay.
1: और हम तो खाते थे। हाँ। हमें क्या पता था वही है वाटरमेलन शुगर है। अच्छा। वो तो बाद में पता लगा है। और हम वो खा कर हम हंसे जा रहे हैं, ठाके मार मार के हंस रहे हम लोग। तो आई थिंक वो अब चाहे भी तो पता नहीं कब कैसे क्या होगा, मगर वो चीज़ है कि बस बहुत खुशी देती है सोच कर ही।
0: अरे वाह, तो ये तो पर यहाँ का जो वाटरमेलन है
1: जी,
0: वो तो बहुत ही मीठा ही आता है।
1: हाँ, इसलिए मैं चीनी नहीं डाल पाता, इसलिए उसके बाद मैं हंस नहीं पाता हूँ।
0: हम लोग तो मुझे मेरा बचपन याद है। हम आपने कभी तरबूज के ऊपर काला नमक डाल के खाया?
1: अरे बिल्कुल, वही सब होता था। कभी काला नमक डाल रहा है, कभी कुछ और डाल रहा है, साथ में ककड़ी भी होती थी डालने के लिए, फ्लेवर वाइज है ना, तो कॉम्बिनेशन रहता था। आम होते थे जैसे भाई ने बोला, गुटलियों पे गुटलियां, और गुटलियों का हिस्सा मेरा होता था सारा। हाँ,
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैं बदतमीजी से खाता हूँ ना। हाँ। तो
0: मैं भी बहुत बदतमीजी से गुटली खाती हूँ। मेरे को गुटली खाते हुए किसी को देखना नहीं चाहिए।
1: एक्चुअली किसी को नहीं देखना चाहिए खाना खाते हुए। तो खैर, थैंक यू।
0: सो अभी मयंक आप बताइए कि बचपन की कोई ऐसी याद जो म्यूजिक, फैमिली या सीखने से जुड़ी हो और आपके दिल के करीब हो।
3: बचपन में मैं जब मैं गुरुकुल गया स्टडी करने के लिए, मैं लाइक हॉस्टल में ही पला बड़ा हूँ। सो वहाँ पे पहले जब हम गए तब ऐसा क्यों लगता था कि क्यों यहाँ पे आए, क्या है यहाँ पे, मतलब बाद में धीरे धीरे फ्रेंड्स बने और जो भी हम एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन बेल। जब बेल बजता है तब खाने जाओ, बेल बजता है रीडिंग पे बैठो, बेल बजता है सो जाओ। सो लाइक एक टाइम ही ऐसा हो रहा था लाइक क्यों कर रहे हैं ऐसा सब, मतलब। और एक्चुअल लाइफ में जब हम बाहर निकले और वहाँ पे जब खाने का भी था तो भी सोच रहे हैं ये सब क्यों खाया, अच्छा क्यों नहीं खाया। लेकिन जब हम लाइक बाहर निकले, देखा लाइक जो भी हमने जिया है फ्रेंड के साथ एज अ हॉस्टल लाइफ में, दैट वाज गुड,
0: दैट
3: वाज रियल। लाइक बाहर आके पता चला भी कुछ जो भी सीखा है अच्छे के लिए सीखा है। सो लाइक इट वाज लाइक गुड मेमोरी। एंड लाइक म्यूजिक में भी मैं बताऊँ, सो लाइक मैं जब सीख रहा था तो पहला मुझे चांस मिला था हमारे जो स्वामी जी वगैरह है वो लोग मुझे एक बार बाहर ले गए और मुझे बोला कि आपको एक साथ इसके साथ बजाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट, एक बार बजाओ इट्स ओके। और लाइक मैंने बजाया तो पता नहीं अच्छा बजाया होगा, मुझे पता नहीं, और पता नहीं किसी ने मुझे लाइक 1000 rupees एज अ गिफ्ट किए। सो लाइक वे बहुत छोटा था, लाइक सडनली मुझे कुछ हुआ लाइक क्यों दिया है, मतलब। तो मतलब वो जो मेमोरीज थी ना वो मतलब आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ कि किसी ने मुझे लाइक खुश होके 1000 rupees ऑन स्टेज दिया था, तो देर वॉज लाइक गुड मेमोरी। एंड देन आई रियलाइज ओके जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और चल रहा है अभी से। $1000
0: भी वो खुशी नहीं देता जो कि आपको उस जमाने में 1000 rupees से मिलती है।
3: जी।
0: कितनी अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने अपने बचपन का शेयर किया। सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, सबकी अपनी कहानियां हैं, लेकिन जब आप सबकी बात सुनी तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका नॉस्टैल्जिया जो है वो बिल्कुल सिमिलर है सब। एंड इट इज़ सो नाइस कि आप लोग सब शेयर कर रहे हैं आज हमारे लिसनर्स के साथ अपने बारे में, और पीपल आर गेटिंग टू नो यू एज एन इंडिविजुअल। एंड बिफोर आई कम टू आर सिग्नेचर क्वेश्चन, हेलो जिंदगी के दो सिग्नेचर क्वेश्चन हैं दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू, बट बिफोर दैट आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट आई थिंक आई डिड इट इंटेंशनली. मैंने प्रिया से सवाल किया ही नहीं, मैं प्रिया को भूल गई बीच में, क्योंकि मैं वैभव और मयंक के साथ. उसका रीज़न ये है कि प्रिया यहाँ पे बहुत शरारत कर रही है स्टूडियो में, तो मैंने सोचा इनका इनसे सवाल ही नहीं करते. और वो भी वो कौन सा सवाल है, मेन सवाल वो था बचपन का, और प्रिया अपने बचपन की कोई ना कोई याद तो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी. प्रिया बताइए आपका फेवरेट गाना.
4: थैंक यू ऐश. मैं सच में कुछ सिंसियर बताने वाली थी, लेकिन आज मुझे ना अपनी एक बचपन की ऐसी शैतानी याद आ रही है जो मेरी मम्मी, मैं, मेरी दीदियां हम मिल के बात करते हैं. मैं सबको बताऊंगी, मुझे गुड़िया से खेलने का बहुत शौक था. हर गर्मी की छुट्टियों में एक नई गुड़िया आती थी, और मुझे कपड़े से वो बनाते थे डॉल, वो भी बनाने का बहुत शौक था. हर जून की छुट्टियों में बनाना, फिर उसकी दूसरे मोहल्ले में शादी होती थी, बारात आती थी, विदाई होती थी, हम रोते थे, वो सब होता था. एक बार बड़ा प्रॉपर दहेज वहेज सब इकट्ठा करते थे हम लोग, और बिस्किट्स के केक और डलिया में सजा के, एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू. तो इंक्लूडिंग बारबी डॉल, उस जमाने तक कहीं कोई दूर के रिलेटिव कनाडा से एक लेके आ गए थे, और उसके बाल चूहे ने काट दिए.
0: ओह माय गॉड.
4: अब ये हुआ कि भाई चूहे ने बाल काट दिए, बाल आए कहाँ से. गर्मी की छुट्टियों में मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और कुछ ना कुछ काटना पीटना बनाती रहती, गुड़िया के लिए हर चीज़, थ्री पीस कोट पैंट एवरीथिंग बनाना सिलना, बाल कैसे आएंगे. तो बहुत देर सोचती रही, जब मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं, थोड़े काट लेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा. तो मैंने चुपके से जाके, सो रही थी दोपहर में, मम्मियों की आदत है सो जाती हैं काम वाम करके, मैंने उस अपनी मम्मी को शक भी नहीं होगा क्योंकि मैं इतनी सीधी हूँ, मैंने जाके बाल काटे और कुछ तो उसको एक बन बना के और अपनी गुड़िया के चिपका दिया. शाम को मम्मी को कहीं से दो चार बाल पड़े हुए मिले. मम्मी बोलती है, ये बाल किस कैसे यहाँ पे तकिया के पास पड़े हुए हैं. फिर मैं सोचू छुपाने, ज्यादा दिन छुपेगा नहीं, मुझे बता देना चाहिए. और मैंने मम्मी को बोला, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहाँ से बाल कहाँ से लेके आती, दर्जी के यहाँ जाती हूँ कपड़े तो मिल जाते हैं, नाऊ के यहाँ से जाके बाल तो उठाने नहीं जाऊंगी गुड़िया के लिए. और वो जो मम्मी का रिएक्शन था, मम्मी सोच रही थी कि इसकी क्रिएटिविटी पे इसकी तारीफ करूं या डांटूं या हंसूं. मैंने बोला, बहुत थोड़े से काटे, दिखेंगे भी नहीं, चिंता मत करो, मेरी गुड़िया की शादी हो जाएगी अच्छे से. तो बस ये मतलब मेरी बेस्ट ऑफ दी मेमोरीज में से है, जो शैतानी भी थी लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी तारीफ भी की थी, वाह बाल तुमने इतने सुंदर उसका बन बना दिया है इन बालों से.
0: थैंक यू सो मच प्रिया. एक्चुअली मैंने जब आपको मैं पहली बार मिली थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी शरारती हो, पर आज मुझे पता चल रहा है कि आप कितनी कितनी शरारती हैं. तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज का कॉन्वर्सेशन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ परफॉर्मेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों को जान रहे हैं जो आपके साथ स्टेज, जो आपके लिए स्टेज पर आपको आकर एंटरटेन करते हैं. And knowing them as individuals is something that's our effort. So, actually, Hello Zindagi ka purpose bhi yehi hai. Hello Zindagi ek not-for-profit organization hai, jo community connection, well-being, cultural understanding aur engagement ko promote karti hai. Hamara radio program jo hai, it inspires stories, meaningful conversations aur Bollywood music. इन सब के साथ थ्रू इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी और वाइडर ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को कनेक्ट करने की जो हमारी एक छोटी सी कोशिश है, और हमारी ये जो कोशिश है उसी के उसको हम आप सबके साथ हेलो ज़िंदगी के थ्रू लेकर आए हुए हैं आज. और आज की जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी हमारे साथ अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे हैं. तो मैं before I go on to our signature questions and ask more questions, because we've got these wonderful people in the studio, तो वैभव जो हैं उनको हमने request की कि वो अपने गिटार को अपने साथ लेकर आए, जिसको वो शायद अपना छोटा भाई कहते हैं, आई थिंक सो. क्या कहते हैं वैभव?
1: हाँ, पहले मयंक आने में आना खानी कर रहा था
0: जी,
1: तो मैंने बोला भाई आ जाओ, नहीं तो फिर मेरे को अपने दूसरे भाई को लेके जाना पड़ेगा. तो मयंक कह रहा है अगर ऐसा है तो फिर मैं भी अपने भाई को ले आऊंगा. तो मयंक भी अपने साथ कीहॉर्न लेकर आया है, फिर मैं अपने साथ गिटार ले आया हूँ.
0: वेरी गुड. तो अब जब आप ये सब लेकर ही आए अपने भाइयों को साथ में, हाँ, तो अपने भाइयों का जलवा दिखाइए. और हाउ अबाउट यू प्ले समथिंग फॉर आवर लिसनर्स?
1: लेट मी जस्ट गेट रेडी. आपको आवाज आ रही?
0: बिल्कुल.

0: Thank you.
1: I am speechless, honestly. Oh my God, this was incredible, really. My God, thank you so much. I'm sure our listeners are going to really appreciate it, and thank you for all your effort for bringing your brothers with you in the studios and un sabka aapne jo presentation diya. Oh my God,
0: thank you so much
1: to all our listeners. ये तो मैं जैसे कहते हैं झलकी है आपने जो अभी देखी
0: trailer,
1: तो
0: trailer.
1: प्लीज आप अब आपने जब देख ही लिया है ये झलकी को ये ट्रेलर को तो प्लीज 30th अक्टूबर का जो इवेंट है हमारा नॉक्स कम्युनिटी आर्ट सेंटर बेस वाटर में शाम को 6:30 PM तो ये आप प्लीज इन आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए अपने टिकट जल्दी से बुक कराएं और जरूर आए बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है ऑडियंस और ऑडियंस का अप्रिसिएशन एंड दैट इज व्हाट वी वुड लव यू ऑल टू डू फॉर दीज वंडरफुल एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट दैट वी हैव एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू यू ऑल राइट सो वी विल कैरी ऑन विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड हमारा हेलो जिंदगी पे एक क्वेश्चन है जो हम जो भी गेस्ट आते हैं हमारे स्टूडियो में हम सबसे ये सवाल पूछते हैं कि और आज मेरे पास एक नहीं पांच गेस्ट हैं सो वी आर गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ देम एंड द क्वेश्चन इज हु आर यू एज अ पर्सन तो किट्टू आपसे शुरू करते हैं किट्टू हु आर यू एज अ पर्सन बियॉन्ड द स्टेज एंड द स्पॉटलाइट एंड अगर आपको लगता है कि ये सवाल मैंने आपसे एक तरीके से पूछ ही लिया है तो आप दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं अपने कवि की कल्पना जो है आपकी जी, उस स्टाइल में भी दे सकते हैं
2: बिल्कुल पहले बात तो ये सवाल हम रोज ही अपने आप से पूछ रहे हैं और कई जगह जाके फिर इसका आंसर ढूंढ रहे हैं पर मेरी कोशिश ये है कि मुझे लगता है कि इसका आंसर है पहले बहुत साधारण जब बचपन में कि क्या बनना है तो पायलट बनना है इंजीनियर बनना है बनना कुछ भी नहीं है फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और मुझे लगता है कि जब समझ आने लगता है तो फिर आसान हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि स्टेज से हटकर कोशिश है एक समझदार मस्करा बनने की कि चीज़ें शायद काफ़ी मुश्किल समझ आ रही हैं लेकिन जब बात करने पे आएँ तो थोड़ा हंसी मजाक तक ही बातें चलें और स्माइल्स रहें जीवन में ना कि परेशानियां क्योंकि परेशानियां तो हैं ही अब वो बताने की बात थोड़ी ही है कोई
1: exactly.
2: तो हाँ बस यही है समझदार मस्करा
1: समझदार मस्करा तो आप आई मीन आई वुडंट वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट बट आपको ऐसा लगता है कि आर यू Do you think that you mask what's going on inside, or is there a safe space where we see the real kid too?
2: अच्छा masking में क्या होता है masking है to मुखौटा है मुखौटे में मेरी असली शक्ल नहीं दिखेगी
1: हाँ वही पूछा
2: पर अगर makeup हो तो मेरी शक्ल ही दिखेगी लेकिन बस blemishes हट जाएंगे concealer जो है वो कुछ काम अपना कर देगा under eye पर थोड़ा सा अपना काम हो जाएगा तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुखौटा ना पहना जाए मुखौटे में तो फिर हम सब अजनबी आप पहचान ही नहीं पाएंगे हम कौन है तो मुझे लगता है जीवन मैस्करेड पार्टी नहीं है मेकअप पार्टी है
1: ब्यूटीफुली आंसर्ड वाओ नाउ आई एम गेटिंग टू नो द रियल किट्टू बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया थैंक यू
2: बहुत शुक्रिया
1: शाम्भवी आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी की वो कौन सी क्वालिटी है जो आप सबसे आपको सबसे ज्यादा डिफाइन करती है आई मीन और यू नो बेसिकली हु आर यू एज अ पर्सन एनीथिंग यू वांट टू
3: शेयर आई थिंक I've still not figured out exactly.
1: आप अभी बहुत छोटी हैं actually. मैं आपसे बहुत बड़े-बड़े सवाल पूछ रही हूँ. I'm sorry.
3: No, but it kind of reminds me. So, my partner, he always says something that we are always in the making.
1: Yeah.
3: And I feel कि मेरा भी कुछ ऐसा ही situation है कि exactly पता नहीं है कि अभी क्या है, but कुछ तो बन रहा है.
1: Okay.
3: So I guess my personality is a bunch of. Things you know I there are days I absolutely I'm super dramatic okay. har cheez pe nakre and then there are days that I'm just you know in a corner reading my book ekdam shant kuch okay. bhi nahi so really depends on the day
1: all right no, thank yes. you and Vaibhav over to you
0: ji ma'am
1: the same question कि आप अपने आप को आर्टिस्ट के अलावा और क्या कहना चाहेंगे कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप कौन है वैभव
0: देखिए आर्ट से अगर मुझे आप हटा देंगे तो कुछ वजूद नहीं है मेरा
1: oh
0: उसके अलावा तो कुछ करा ही नहीं जीवन में खैर
1: ये सच नहीं है
0: नहीं मैं दिल्ली से हूँ दिल वाला हूँ दोस्तों का बहुत सगा हूँ मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा है मगर वही मुश्किल है खैर कि खैर छोड़िए इस बात को मेरे को लगता है कि मेरा आर्ट करने का भी जरिया यही है कि जैसे किट्टू ने कहा कि कुछ चीज़ें आप बताते हैं कुछ चीज़ें आप अपने पास रखते हैं तो मेरे को लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ एनी काइंड बी थिएटर दैट आई डू दैट मे बी म्यूजिक दैट आई डू द सॉन्ग्स दैट आई राइट और एनी थिंग दैट आई डू प्रॉब्ली फ्रॉम दैट एस्पेक्ट एनी इंस्ट्रूमेंट दैट आई प्ले इज अ फॉर्म ऑफ हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ मेरे को लगता है मैं आर्ट के पीछे छुपता हूँ या मेरे को लगता है यही मेरा जरिया है मेरी बात कहने का
1: जी.
0: तो इससे तो मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाऊंगा तो खैर इसके अलावा मैं जवाब भी कुछ नहीं दे पाऊंगा और
1: जी यू एक्चुअली आंसर दैट ब्यूटीफुली थैंक यू
0: शुक्रिया
1: मयंक आप बताइए आप कैसे डिफाइन करेंगे अपने एज अ पर्सन कुछ भी बताइए अपने बारे में
2: एज अ पर्सन तो लाइक मुझे थोड़ा शांत रहना अच्छा लगता है बिकॉज
1: आप दिखते ही बहुत शांत है
2: लाइक नेचुरली मेरा ऐसा है और किसी पे गुस्सा मुझे जल्दी आता नहीं पता नहीं क्यों ऐसे ही है और ऐसे लाइक रियल जिंदगी में कोई अच्छा आदमी मिल जाए हमें तो और मज़ा आता है सो सब है और कभी कभार लगता है कि आल गेटिंग बोरिंग आल गेटिंग आई हैव टू डू समथिंग सो आल पर्सनली फोकस ऑन द म्यूजिक सो कई बार बोलते हैं ना कुछ लाइक कहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है सो कहीं ना कहीं से आंसर मिलता है वो है म्यूजिक मेरी लाइफ में सो आल ऑल क्रेडिट्स गिव टू द म्यूजिक दैट्स इट
1: थैंक यू So now we are coming to the second question, which we ask all our listeners. Our guests in the studios. But before we do that, Priya, मैं आपको नहीं ignore करूँगी इस बार. तो मैं आपसे सवाल ज़रूर पूछने वाली हूँ. आप बताएँ कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, और anything that defines you as a person.
4: मैं शायद जैसे मैंने अपना एक pen name रखा है प्रियाशा. तो एक प्यारी सी आशा जिसका सफ़र अभी चल रहा है निरंतर शायद चलता रहेगा मैं खुद को कभी उस मुकाम पर नहीं देखना चाहती कि मैं ये हूँ शायद मैं हर दिन खुद को तराश रही हूँ हर दिन अपने शब्दों के ज़रिए और अपनी कविताओं से और आप जैसे दोस्तों से मिलके हर दिन कुछ ना कुछ सीख रही हूँ तो शायद मैं एक निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने वाली कुछ नया चाहने वाली एक बहुत सारी क्यूरियोसिटी लिए इस दुनिया में घूम रही हूँ तो मैं खुद को अभी भी तलाश रही हूँ
1: ओके थैंक यू सो मच प्रिया एंड अब हमारे पास सिर्फ ऑलमोस्ट पाँच मिनट बचे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इवेंट विच इज़ ऑन द 30th of October आओ हुजूर तुमको बचपन में ले चलें आप क्या शेयर करना चाहेंगे हेलो जिंदगी के बारे में कुछ भी एक वर्ड एक लाइन सो किट्टू आपसे शुरू करते हैं
2: जी बिल्कुल ये बहुत शानदार क्रिएटिव स्पेस बनी है और आर्ट इज क्रिएटेड इन आइसोलेशन एग्जिबिटेड इन पब्लिक पर वो आइसोलेशन बहुत प्यारा हो गया है बाय हैविंग सो मेनी पीपल टुगेदर एंड ऑल थैंक्स टू हेलो जिंदगी इफ इट वाज नॉट फॉर हेलो जिंदगी वी वुड नॉट हैव कम टुगेदर तो यस एब्सोल्युटली मैं तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी होपफुल कि ऐसी स्पेसेस बन सकती हैं इतने टाइम से काम कर रहे हैं और ऐसा हुआ है और जाने से पहले देखो शायर आया है शेर कह के जाएगा
1: बिल्कुल
2: ठीक है तो पिछली वाली बात पे है कि हम खुली किताब हैं पढ़ने वाले बनो हम खुली किताब हैं पढ़ने वाले बनो शो 30 अक्टूबर को है टिकट बुक करो
1: वेरी गुड थैंक यू इस बार मैं ऐसा करती हूँ कि आपके बाद अब मैं प्रिया से पूछ लेती हूँ प्रिया आप बताइए हेलो जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगी एक वर्ड एक लाइन व्हाटएवर
4: एक लाइन तो सबसे पहले थैंक यू हेलो जिंदगी कि हमें वापस मतलब मैं तो इन सबसे ऑलमोस्ट बड़ी हूँ काफ़ी बड़ी हूँ तो हमें हमारे बचपन से मिलवाने के लिए मैं हम सब ने शायद हम जब भी मिलते हैं बात करते हैं इतनी सारी बचपन की चीज़ें लेके आते हैं तो वो शायद यादें जो कहीं दबी हुई थी छुपी हुई थी तो वो उभर कर सामने और मैं जब सबको बताती हूँ कि टिकट बुक करो तो मुझे इतना प्राउड फील होता है दैट वी आर डूइंग सो मच इन दिस इवेंट इट्स नॉट म्यूजिकल इट्स नॉट थिएट्रिकल इट्स नॉट जस्ट पोएट्री वी हैव सो मच टू शोकेस सो प्लीज बुक योर टिकट एंड वी आर वेटिंग टू सी यू ऑन 30th इन द इवनिंग थैंक यू
1: शांभवी वन वर्ड हेलो जिंदगी
3: अ न्यू फैमिली
1: वाओ थैंक यू
0: देखिए सब्बी ने मेरा चुरा लिया है देखिए बस मैं बस यही कहना चाहता हूँ हेलो जिंदगी जिस तरीके से मैं उसको देखता हूँ मेरे को लगता है हमारे भाई गुजरात से हैं, ये भी गुजरात से हैं, फिर वैसे लखनऊ से हैं, फिर अलग अलग जगहों से हम लोग सारे में दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, है ना। तो आप लोग भी अलग अलग जगहों से आए हैं सारे, और बहुत सारे बड़ी फैमिली है हमारी हेलो ज़िंदगी। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों से लाकर एक साथ ला के खड़ा कर दिया एक मंच पर, जो कहीं ना कहीं एक फीलिंग शेयर करते हैं, ये जो एक यूनाइटेड फीलिंग है मेरे लिए, ये हेलो ज़िंदगी।
1: थैंक यू सो मच। एंड माय वन वर्ड, हेलो ज़िंदगी।
2: आपने रूटीन लाइफ से लाइक कुछ मिस आउट कर रहे हैं, देन कम टू द अवर शोस, यू विल गेट योर आंसर देयर।
1: ओह वाओ, दैट वाज गुड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वैभव, शांभवी, प्रिया एंड किट्टू एंड मयंक, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। एंड अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो विजिट www.radioeasternfm.com.au and press on the listen back section, wahan check kijiyega, and you can listen to our go on to our Facebook group and Facebook page as well. Good night to everyone, and hear the last song of the evening.